घने बिन से बाप घने रे सचिया बाटिया बिन से बाप घने रे पैसे पैरे मगर

पवन पवित्र सतजुगी तप अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे हजूर दी बड़ी ही अपरपार कृपा मेहर हो रही है साजिया ने।

हे गुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देग तेग फतेह चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। खालसे जी नू नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रिछा दान। खालसे जी नू श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे इशनान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुल जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा अटल जी संतोख सर जी विवेक सर

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पैरव करही पंच रागनी संग उच्च रही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुन अस लेखी की भई बारी ए भैरव की पंचो नारी पंचम हरक दिस